0: कच्चा माता कच्चा पिता कच्चा भाई कच्चा श्रीमती कच्चा छोरा
1: छोरा
0: कस्तो धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून से साथ सुनखानी सुनसा सुदामा की नारी कर चढ़ी भारी विपत्ति पति से ऊंचाई विनती कर चिंता पिडरले गुरु देवता राजा रूप भला मान सका निदान खाली है बंकन कहीं ज्योति समना देव के ही सौगर मन देव चंगा करके मिलंचु बारी का हर्षित मुलाका मगरने विचार वर्तन में विचार मुटुरे तंबु जमा कर दी सही तंबु अली गए प्रयोजित गपे के दरिका में
1: नारायण
0: जन्म बाला का

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज़।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

उद्घोषक तथा गायक मोहन तामाङ डान्सर तथा मोडल विमला थामी मुख्य सहयोगी गडुल थामी कार्यक्रम संयोजक कुलमान थामी श्री सेपीचन्द्र भूमि संरक्षण समिति भीमेश्वर नगरपालिका नौ सुर्खे

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर द नारी ले प्रगति पथ को।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शङ्खका पाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ धरौ तिस्म साना ननिलौ नागरी गोवर्धन हो तिरे दक्षे बलि दक्षे।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: सम्राट महाते पांडव भाषण कुमा भाषण कालिका गौरछ गरुण र दानवहरू नागमा रावण नासिका।